0: गुस्सा से। भाई लवता की नुनी में वाहक तके ये वाहकता मिहारु आ अड़का आ रूह काए ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिंग एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊं उठ न बिठ न लाऊं नहीं की तू तेरे भाई के राडे नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
2: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हम को लवे के निस्ते आ देरु में
0: को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप
4: वर्जन 2.0
5: वर्जन 2.0
6: ती एहुं तरिंगे एमे मकबूल फन्नानुंगे लवता एंगे निकी हावरक ए फन्नानुंगे मौदुमा तेंगे निकी हावरक

0: 91.1 मेगाहर्ट्ज दिवेही एफएम ईशान अमादो वागुतु
1: नुवदिहे एके मेगाहर्ट्ज दिवेही एफएम
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: ए खियालों ए कणिवेस बयां कोरंदती हिंखम जो में लिबिगें दिए
1: शल वी
0: गेगे मैतुरा दिमायं इशारे कोल्लमुं जोहन पुन्ये जोहन के सुवाल आयराय नगै गने बुने जोहन के फहतुं आयरा हिंगै गती अदिवेस एफहरु बगीचायं अवस नजर इते मुन्ने एरु बयां कोरंदती शऊर तकें आयरा के लोलु गबिए एने के मुस्तगबल जोहन ना कुळवा लेवुमुं कुरिंग ए हिता वेरिविकेंदनी उफाविरिकमे फोनी उम्मीदु थके नमवेस मिफार एनेगे हिता तूणु रिहुमें इउसास कुरेवने वगुती उफलेके राहतक वेदानेती हि बिरुकन्नम फेशिए ए इउसास तं मूणुं फाळवियनु देन आइरा हिनितुं वेलिए कुरियंग अळमुंदिया कोम्मे फियवळकायकु नफ्सुगे हमजेहुं गेल्लिकें दाहेंवेस हिविए

हुआ ना दीदार जिन्हें भी उनका, जहन में उनके सवाल होंगे, जिन्होंने वो बेहिजाब देखे नसीब उनके कमाल होंगे, झुकी नजर का सुरूर ऐसा किसी की सुध-बुध रही ना बाकी, मिलाते होंगे वो जिनसे नजरें, खुदाया उनके क्या हाल होंगे।

बोस देहा लोबिवेयकी देहा सतार वनाहरुनु कुई मशहूर दिवेहि फिल्मु बोस के एमे मकबूल वे ए लोबी किलावा मिलावेकी फिल्मु गे थीम लवा वेस्मे